प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई तब ओह चरणी आए पई। गहु कर पकरी ना आई हाथ,

पाई। सुन संत हो निर्मल विचार, राम नाम बिन गत नहीं काई, गुरपूरा पेटत उधार रहाओ। जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओहो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे, इकत ठौर ओहो नहीं ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मांड, राम जनी कीनी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रहे, इस संग राचे सो कछु नाल है। इसे त्याग सत्संगत करे, वडभागी नानक ओहो तरे। जो मांगे सो भूखा रहे, इस संग राचे सो कछु नाल है।

या समथिंग लाइक, मतलब उन्हें लगे कि ओके साड़ी दोस्ती बन रही है. दैट एक्सक्लूसिव टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं थोड़ा ये कहता जी बीबी है तो बेटी नाल, बट इट कैन बी बोथ वेज, लाइक कोई जरूरी नहीं. पर वो दे नाल थोड़ा जा सौखा हो जाना है जो हूँ कोई 11-12 साल का बच्चा है. यू माइट लाइक कि भाई चलो जी डैड मेरे नाल जा रहा है तो यू नो ए लगता है मैनू, बाकी वो कोई मेरे मैनू ए लगता है कि उन्होंने सौखा हो जाना. अच्छा फिर यदा होर एक तरीका बड़ा सौखा हो सकता है, जे आप बच्चों बड़े प्रेम नाल किचन दे विच थोड़ी कुकिंग की आदत पा दी है, जो कि नीयरली हर बच्चे पै सकती है पर वो प्रेम नाल पैनी है. जे कह दिए असी घर नू बहुत साफ रखना है एंड यू नो खलारा पा देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, दैन इट्स हार्ड. जे आप कही कि कोई गल नहीं खलारा चक्या जाऊगा बाद की है डजेंट मैटर, तो वो एक्चुअली उन्होंने आदत पै जाती, कुकिंग की आदत बच्चों बहुत जल्दी पै जाती है. तो वोदे नाल फिर उन्हें तुहानू ब्रेकफास्ट बना के दे देना, कभी तुसी बना के दे दिता जो उन्होंने थकिया लगता है जां होर है उन्हों. एंड आई थिंक इस तरह कोई होर हॉबी भी पिक की जा सकती जी कॉमन होवे. कई वारी कई पेरेंट्स है जिन्हां नू सॉकर खेडन दा जां किसी नू क्रिकेट खेडन दा शौक है, तो वह फिर उस चीज़ नू नाल नाल रखते हैं उन्होंने हर थां ते. वो तो अमेजिंग ही, वह तो मतलब यू नो ब्लैसिंग इन डिस्काइज हो जाता भी वो नैचुरली हो गया आपे ही, क्योंकि वो किसी नू शौक सीगा ते नाल हर वारी लैके जाना बच्चे नू, तो बच्चा उस शौक नू पा लैंदा. कई बार किसी नू क्रिकेट देखन दा बड़ा शौक हुंदा, रल के वो सारे गेमां नू देखन लग गए. सो उहदे नाल बॉन्ड. सो ये ओके प्रैक्टिकली की प्रैक्टिकली जो मैं तुहानू की एग्जाम्पल दे दिते हॉबी दे राही कुकिंग दे राही वो भी पर वो इमोशनल बॉन्ड इट्स सो इंपॉर्टेंट. मतलब इन्ना ज़्यादा सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड होगा ना किसी भी बंदे ने जो बॉन्ड हुंदा है अगों ना करनी किसी भी गल लई. एक आपां अपने वेखी अडल्ट्स दे विच भी किसी नाल अपना बॉन्ड स्ट्रोंग है आपां नूं ना करनी भी औखी लगती है भई, तो हर गल अपन लगता भी यार नहीं इनू आप नहीं कह सकते. सो वो लिटरली मतलब जानवरों भी छोटे बच्चों भी इट अपलाइज टू एवरीथिंग. सो ये तीन गल्ल मूव ऑन टू अ फोर्थ वन. ये तो इमोशनल बॉन्ड तो बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो सकती, पर मैं कहना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट प्रैक्टिकल. तुसी इंप्लीमेंट करने ने आप इतने आइडियाज शेयर कर रहे हैं तो पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं ना चैकलिस्ट. इट्स इंपॉर्टेंट टू बी मोर एज अ चैकलिस्ट कि अपन अवेयरनैस आ जाए भी ये साडू आप अवेयर हो जाइए. ये जड़ा एक ग्राउंड वर्क है ना. मतलब देखो मैं तो कोई बहुता भाई साहब बैठे ने आप मैं तो उन्होंने तो कुछ दस भी नहीं सकता, तो मतलब गुरसिखी का तो बहुता मैं तो एक आम जहा सधारण जे जिमें मतलब परिवार के गल होंगे साझिया जो दास नू बच्चियां नाल काफ़ी टाइम रेंद्या. कई बार फोन आ जाते कोई परिवार चो हो रहा है कि आपदे एक्सपीरियंसिस ने वो तुहाडे नाल शेयर कर रहे. तो सो मैं एक बार क्विकली मैं मेरी लिस्ट चो भी देख ला भी मैं हाँ जी मतलब ये बॉन्ड का ही हिस्सा है. एक जिहड़ी बच्चे दे विच ना इंपैथी क्रिएट होवे रिस्पैक्ट वो अपने राही होनी है. मतलब ये हालांकि लॉट ऑफ टाइम्स किसी को इन्ना समा नहीं हुंदा आपां जॉबां च हो रहा, बट आई ऑलसो हैव सीन कि वो बच्चे बड़े परिवार नाल जुड़े रहिंदे है जिथे कोई परिवार है जिहड़ा वो जिमें वीडियो कॉल ला ली नानी नू दादी नू जा मतलब यू नो समथिंग लाइक दैट जो उन्होंने बचपन तो. इफ दैट हैपन्स क्वाइट ऑफन वो इंपैथी डिवेलप होंगी है वो फिर उन्होंने बच्चों के जे ये क्योंकि इतने जिमें अपने तो भूआ फुफड़ मासी मासड़ ये सारे से इन का अलग अलग आपू प्यार मिलता सी जो वी दीज किड्स आप ही सब कुछ है. You know, dad and mom is everything. Every relation needs to come through them.

सुगावै, मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अस्त सिदान, ठाकुर कर तन धरिया।

न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत, बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवै है जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै है हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भव सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन से धन।

हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो, आप हाथ दे मोहि बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करियै, सब ऐरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करी।

काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जा बुद कर।

तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा।

कहूँ सिमट भयो शंकर इकट्ठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िला, सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन।

परवार परियां, जब दो तंगा वो हरी केला कहे नानक आनंद होवा। ए मन मेरा हर नाल रहो तू मन मेरे, अंगीकार हो करे तेरा सब नागला सम्राट स्वामी कहे नानक मन मेरे।

0: ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता
1: कोई न जाने तुमरा ऊचे ते, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते।

सोहेला राग गौड़ी दी की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है करते का होई बिचारो तित कर गावो सोहेला सिवरह सृजनहारो तुम गावो मेरे निरपा का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होय रहाओ नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दान कीमत ना पवै तिसदा ते कवन सुमार संभ सह लिखिया मिल कृपा हो तेल देहो सजन असी छड़िया जो होवे साहेब सुमेल कर करेह पाहुचा सदड़ नित बवन सदन हार सिमरिय नानक से दे आवन राग आसा महला पहला

0: प्रसाद कतते क्या छिज दिसे क्या बिज बिसें क्या बिज लोके के आदित सुख के राजन प्रभा है के धर्मं तुजा है जतन कृति है के छत्रन छत्री है के आद देव है के आप पेव है के रोजी रजा के रही मेरे हक है के अब गुलगुना है के शाहन शाह है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है
1: के सर्वं दली है
0: के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य
1: है के सर्वत्र बोले के सर्वत्र बोले
0: के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र पिस है
1: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
0: के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र पिस है
1: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
1: के सर्वत्र सोखे के सर्वत्र पोखे
0: के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे
1: के सर्वत्र देसे के सर्वत्र पेसे
0: के सर्वत्र मान्य सदैवं प्रदान्य
1: के सर्वत्र जापे के सर्वत्र थापे
0: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान्य
1: के सर्वत्र हुए के सर्वत्र चले
0: के सर्वं कलीमे के परमन फहीमे
1: के साहिब कलामे
0: के हुस्नुल वजू है तमामल रजू है
1: हमें सलामे सलीखत मुदामे
0: गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते
1: बुलंदुल मकाने जमीनुल जमाने
0: तमीजुल तमामे रजू अल निदाने
1: अरीबुल अजीमे रिसाई के दीने
0: अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है
1: अजीजुल निवास है गनीमुल खिराज है
0: निरुकत स्वरूप है त्रिमुकत विभूत।

0: निवास रूपे अगाध्य अनुपे
1: ओंगाध रूपे अनाद स्वरूपे
0: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: त्रिवर्गन त्रिबादे अगंजे अगादे
0: सुबन सर्प पागे सुसर्प अनुरागे
1: त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है
0: निरकन प्रणास है पृथ्वी प्रवास है
1: निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है
0: त्रिभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनुपे
1: निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है
0: अनुपे स्वरूप है प्रजुगत अनुपे
1: चाचरी छंद अपंग।

0: जात है जाद है सर्वं हंता सर्वं गंता
1: सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
1: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं
1: सर्वं चुक्ता सर्वं मुक्ता
0: सावलचन त्व प्रसाद नमो नरकनासे सदेवं प्रकाशे
1: अनंत स्वरूपे अभंगल में भूते
0: परमात्म परमाते सदा सर्व साथे
1: अनंत स्वरूपे निर्वाण में भूते
0: अनंगीय नामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: न
0: पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा
1: न खाते न माते न चाते न पाते
0: निसाकन सरीक है मितो अमीक है
1: प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर
0: है
1: साहेब दिमाग है के उसनल चराग है के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद
0: है
1: गरीब मुल्क हिरास है गरीब उल निवास
0: है
1: कलंकन पढ़नास है समस्तुल निवास
0: है
1: समस्तुल सुबह है के साहेब किरा सरबुल गवन है कि हमें सुल रवन है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा
0: है
1: अचलन प्रकाश है कि अमितो सुभाष है अमितो पसा है कि आत्म प्रभा
0: है
1: मधुपर चंत परसा मुनमन पर नाम गुनगन मुदाम अन गन पर नाम मुन मन सलाम अन पव अनास मुन मन प्रकाश अन छिज अंग आसन अपांग जल थल अमंड दिस विश अपांड अन पव अनास तितर तुरा ओंकार आद कथनी अनाद कर पर नाम चित चन्न नाम अंजज गात अन रंज पात आठ तरम अत डीठ करम हर बोल मना चंत।

0: तन है जग के कन है,
1: मन माने है जो जाने है,
0: सरबन पर है सरबन कर है,
1: सर्वास है सर्वनाश है,
0: करुणा कर है विशंबर है,
1: सर्वेश्वर है कृतेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है कलखंडस है,
1: भारत

0: भुजंग प्रयात चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
1: नमो राज राज नमो इंद्र इंद्र
0: नमो अंधकार नमो तेज तेज
1: नमो बृंद बृंद नमो बीज बीज
0: नमो राज संताम संसात रूपे
1: नमो परम तत्त्वं तत्त्वं स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो कोय कोजे नमो पान पाने
0: नमो कल कर्ता नमो शांत रूपे
1: नमो इंद्र इंद्र नारंग भूते
0: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
1: नमो यासे यासे नमो बांक बांके
0: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
1: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
0: एक अक्षरी छंद अजय अले अबे अबे
1: अबू अजू अनाज अकास
0: अगंज अपंज अलख

0: मान परे मन में कर पर्वत पांका ले ना लेंगे
1: अरे मरो मवासन माते मतंग मान मलेंगे
0: जी पाजी भगवान के पावन त्याग ज्ञान दान करेंगे
1: बेर अपा ब्रे यार अबिचारे साकी ताप चया
0: तो देल प्रेम मवासन माते ज्ञान के मान लिया
1: कार्य करंक तो नहा सुबातिन ही चकचाल लवेया
0: साई सीसा कोज नाई जाच रे सो एक दवेया
1: दान देव फिंदनी सच बुद्ध पवित्र पवन च पेंगे
0: जीव जिते जग में सार में पल ही पल में सदा तपेंगे
1: पुण्य प्रतापिन पाद चे तुम पापिन के पो पुंच कपेंगे
0: सास मुख रंग परे जग हत रवे हम लोग चपेंगे
1: मानव इंद्र का जिद्र राधव जोन तो लोक राज करेंगे
0: कोट स्नान विदार विदार एक सो अमर साज भरेंगे
1: सची पर अंत में सचुम फास भरेंगे कहा पयो चौदह लोच मुंद के बैठियो पचान गायो
0: नाथ प्रयोगी सात समुद्र लोग के ऊपर लोग गवायो
1: बास के बिखियां सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो
0: सात को सुन ले हो सब दिन प्रेम की उतनी प्रभायो
1: खाओ ले पान पूछ यह सुर खाओ लिंग करत खायो
0: खाओ लो प्रोहर बच्चिन जा में

0: बच्चा श्री सुजो करे रक्षा
1: राख ले हो मोहे राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे
0: के हता तुमो पूरी चतुर्दश कांता
1: काल पाए ब्रह्मा बप्तरा काल पाए शिव जो अवतरा
0: था सकल काल का किया तमाचा
1: जवन का जोगी शिव की ओ वेद राज ब्रह्मा जूथी ओ
0: जवन काल सब लोक सदारा नंद का रहता है हमारा
1: जवन काल सब जगत बनायो देवता जशन पजायो
0: और

0: सगरी सृष्टि काय जंभव आज जगत स्वरूप से
1: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संघरो
0: सकमलेश करो रणकाता
1: तुझा सनी परे दिन के दोस्त दुख त्यह वे मरे
0: जीवन पक परे तिहारे दिन के

0: यीशु अमृत गुर ते पाया,
1: पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन बसाया।
0: जी जन सब तो दुपा एक वेख पर सनाया,
1: लाभ लोभ अहंकार छूटा सतगुरु भला पाया।
0: कह नानक जिसनु आप तो था तिन अमृत गुर ते पाया।
1: भगता की चाल जरा भी चाल।

0: पवित्र माता पिता कुटुंब सहित सों पवित्र संत सेवाया
1: कहदे पवित्र सुंदर पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाय
2: कह नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर ध्याया
1: करमी सहज न उपजे बिन सहज सहसा न जाए
0: न जाए सहसा कत संग रहे कर्म कमाए
1: सहस जीव मलिन है कित संजम तोता जाए
0: मन तो वो शब्द लागो हर सो रहो चित लाए
1: नानक गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा इव जाए
0: जियो मैले बारो निर्मल
2: निर्मल जियो तमले तिनी जन

0: आप मिलिया करण कारण जोग
1: ये शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया
0: कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया
1: जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन नाम साया
0: बरसाती हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया
1: कह नानक हो शरीर परवान हो आजन सतगुरु स्यों चितलाया।

0: अपने को सास संस्कृत पाले
1: प्रभु से लाग रहे हो मेरा चीत
0: आदि अंत प्रभु सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ
1: मन विलास भय साहिब के अचरज देख बड़ाई
0: हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभु पूरन पैज
1: मन विलास

चीनत वस्त्र दीन वासाज सुधम अपदा ते रखिया गनका परत पूरे ते का श्री सतगुरु सो